0: It's the summer of 1972, and the German city of Heidelberg welcomes 1,000 athletes from 43 nations to the fourth edition of the Paralympic Games. Among them is Indian swimmer Murlikant Petkar.
1: उस टाइम मैं अपने इंडियन एम्बेसेशन और इंडियन टीम लेने के लिए
2: वी लैंडेड देयर वी सॉ सम रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गेम्स एसोसिएशन बट आल्सो सम इंडियन एक्सपैट्रिएट्स द लोकल्स फ्रॉम द इंडियन कम्युनिटी देयर गिफ्टेड मी फ्लावर्स एंड एट दैट मोमेंट आई फेल्ट लाइक अ विनर आई किस्ड द लैंड बिलो एंड डिसाइडेड दैट आई विल विन अ मेडल फॉर माय कंट्री.
0: Murlikant Petkar had been serving his country 7 years earlier when he suffered the injury that changed his life. It happened as he was fighting in the war between India and Pakistan.
1: Actually, kya hua tha? Main udhar Kashmir mein mera unit tha, 148 GR.
2: Actually, I was posted in Kashmir with a military unit meant for trainees, and we were waiting in our bunkers. Then suddenly, around afternoon.